ने में मदद देंगे। मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक के एक एग्जीक्यूटिव ने बिजली के बाकिफायत इस्तेमाल की बढ़ती हुई ज़रूरत की तरफ इशारा करते हुए मजीद कहा कि डेटा सेंटर्स, कारखानों और इमारतों में इस टेक्नोलॉजी की तलब बढ़ने की तवक्को है। बर्की मसनूआत बनाने वाली कंपनी टी डी के डेटा सेंटर्स के लिए कूलिंग आलात की फरोख्त बढ़ाने की गर्ज से अमरीकी मसनूआत साज कंपनी को खरीदने के लिए तैयार है। हिटाची ने ऐलान किया है कि वो डेटा सेंटर के ट्रांसफार्मर के पुर्जाजात बनाने वाली एक कैनेडियन कंपनी खरीद रही है। इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें ख़त्म हुई। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए NHK.jp/urdu।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समय अनुसार 1 सितंबर मंगलवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वायला कावानो से सुने समाचार। नेपाल चीन सीमा पर अचानक आई प्रलयकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,003 हो गई है। बचाव कर्मी 4,400 से अधिक लापता लोगों की तलाश में जुटे हैं, लेकिन भारी मशीनरी के अभाव में उनके प्रयास बाधित हो रहे हैं। मंगलवार को नेपाल के अधिकारियों ने बताया कि बुधवार की बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़कर 987 हो गई है। 5 जापानी नागरिकों सहित 3,900 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। वहीं सीमा के दूसरी ओर चीन के सरकारी मीडिया ने अपने यहाँ मृतकों की संख्या 16 और लापता लोगों की संख्या 540 से अधिक बताई है। नेपाल के प्रभावित क्षेत्रों में सेना और पुलिस के लगभग 10,000 जवान तैनात किए गए हैं, लेकिन बुनियादी ढांचे को पहुंचे भारी नुकसान और मलबा हटाने वाली भारी मशीनरी के अभाव में तलाश व बचाव कार्य धीमी गति से चल रहे हैं। नेपाल के रसुआ और नुवाकोट जिलों में बचाव कार्य जारी है, जहां पन बिजली घरों में 900 से अधिक लोग फंसे हुए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच करीब 1 महीने में पहली बार हुए हमलों के बाद तनाव बढ़ रहा है। ऐसे में चिंता बढ़ती जा रही है कि लड़ाई और तेज हो सकती है। फॉक्स न्यूज ने सोमवार को खबर दी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फोन इंटरव्यू में उनसे कहा कि जॉर्डन में अमेरिकी अड्डों पर हुए ईरानी हमलों का जवाब दिया जाएगा। उन्होंने ईरान को करारा जवाब देने का संकल्प लिया। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरानी उनसे मिलना चाहते हैं, लेकिन उन्हें नहीं लगता कि उनके साथ किसी समझौते की उम्मीद की जा सकती है। उधर ईरानी मीडिया ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC के हवाले से बताया कि होर्मुज जलडमरू मध्य में एक अवैध बड़ा टैंकर बारूदी सुरंग की चपेट में आ गया है, लेकिन अमेरिका की केंद्रीय कमान ने IRGC के दावों को खारिज करते हुए कहा कि कोई भी जहाज बारूदी सुरंग की चपेट में नहीं आया है। इस बीच अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने उत्तरी कैरोलिना के एशविल में आयोजित वित्त मंत्रियों की G20 बैठक में ईरान पर आर्थिक प्रतिबंधों के बारे में पत्रकारों से बात की। गौरतलब है कि अमेरिका इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। उन्होंने कहा, वे इन प्रतिबंधों को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। अगर आप ईरानी नेताओं के पिछले 10 दिनों के बयानों पर गौर करें, तो आप देखेंगे कि वे अपनी अर्थव्यवस्था की स्थिति को लेकर सदमे में हैं। बेसर ने कहा कि ईरानी नेता आर्थिक रूप से पिछड़ने के कारण हिंसक प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ईरान की अर्थव्यवस्था का पतन होना ज़रूरी नहीं है, सरकार को बस होश में आने की ज़रूरत है। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने किर्गिस्तान में एक क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की। ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार पेजेशकियान राजनयिक समाधान तलाश रहे हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ईरान अमेरिका के साथ हुए समझौता ज्ञापन को लागू करने के लिए तैयार है, बशर्ते अमेरिका भी अपनी प्रतिबद्धताओं का पालन करे। अमेरिका G20 के वित्तीय प्रमुखों की बैठक की मेजबानी कर रहा है, जिसमें वैश्विक अर्थव्यवस्था पर चर्चा की जा रही है। वैश्विक आर्थिक जोखिम और उनसे निपटने के तरीके शुरुआती दौर की चर्चा के मुख्य विषय रहे। उत्तरी कैरोलिना के एशविल शहर में आयोजित इस 2 दिवसीय बैठक के दौरान अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने विकास पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर बल दिया। बेसेंट ने कहा, आज यहाँ हमारा लक्ष्य विकास का अपना संदेश दोहराना है, क्योंकि दुनिया कर्ज में डूबी हुई है। वैश्विक वित्तीय संकट और कोविड दोनों के बाद इससे बाहर निकलने का एकमात्र तरीका विकास ही है। उन्होंने विश्वास जताया कि कई नेता इस विचार के प्रति सकारात्मक होंगे। ये बैठक अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के साए में की जा रही है। प्रतिभागियों ने ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से जुड़ी मुद्रास्फीति के वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव की चिंता
और इस जोखिम से निपटने के उपायों पर चर्चा की। माना जा रहा है कि उन्होंने अहम खनिज संसाधनों के लिए आपूर्ति श्रृंखलाएं सुनिश्चित करने की आवश्यकता के बारे में भी बात की। G7 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक भी आयोजित की जा रही है। माना जाता है कि वे ईरान पर अमेरिका के नए आर्थिक प्रतिबंधों और वित्तीय तंत्रों पर उन्नत AI मॉडलों के खतरों पर भी चर्चा करेंगे।

ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। जापान सरकार के मानक दीर्घावधि बंध पत्रों पर मिलने वाला लाभ लगभग 30 वर्षों के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया है। देश की वित्तीय हालत से जुड़ी चिंताओं के चलते निवेशक बंध पत्र बेच रहे हैं। मंगलवार को 10 वर्षीय बंध पत्रों की ब्याज दर 3% तक पहुंच गई। ब्रोकरेज कंपनी जापान बॉन्ड ट्रेडिंग के अनुसार ये अक्टूबर 1996 के बाद का सर्वोच्च स्तर है। बैंक ऑफ जापान द्वारा ब्याज दरों में समय पूर्व वृद्धि की अटकलें और अमरीकी बंधपत्रों की ब्याज दरें बढ़ने की आशंकाएं बिकवाली का दबाव बना रही हैं। प्रमुख जापानी इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता अपने डाटा सेंटर व्यवसायों का विस्तार करने के लिए विदेशी कंपनियों का अधिग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि एआई के बढ़ते प्रचलन के बीच डाटा सेंटरों की वैश्विक मांग में वृद्धि देखी जा रही है। मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक अमेरिका स्थित एक ऊर्जा संबंधी कंपनी का लगभग 220 अरब येन यानी लगभग 1.4 अरब डॉलर में अधिग्रहण करने जा रही है। ये अधिग्रहण ऐसे समय में होने जा रहा है जब इंजीनियर डाटा सेंटरों द्वारा बिजली की खपत कम करने के प्रयासों में जुटे हैं। मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक के अनुसार इस अमरीकी कंपनी का सॉफ्टवेयर बिजली की खपत की कुशलता बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है और मित्सुबिशी बिजली हासिल करने व वितरण करने के उपकरणों में विशेषज्ञता रखती है। दोनों कंपनियों की विशेषताएं घरेलू और विदेशी स्तर पर उसके डाटा सेंटर व्यवसायों को बढ़ावा देने में मदद करेंगी। मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक के एक अधिकारी ने कुशल ऊर्जा उपयोग की बढ़ती आवश्यकता की ओर इशारा करते हुए कहा कि डाटा सेंटरों, कारखानों और इमारतों में इस तकनीक की मांग बढ़ने की उम्मीद है।

0: इलेक्ट्रॉनिक हिस्से पुर्जों की निर्माता कंपनी टीडीके डाटा सेंटरों के लिए प्रशीतन उपकरणों की बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से हिस्से पुर्जों की एक अमरीकी कंपनी का अधिग्रहण करने जा रही है। उधर हिताची ने घोषणा की है कि वो एक कनाडाई कंपनी का अधिग्रहण करने जा रही है जो डाटा सेंटर के ट्रांसफॉर्मर के हिस्से पुर्जे बनाती है।
1: इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।